0: इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की, इनके मुंह में बर्फ जम गया। चाहे इनकी माँ सोनिया जी हो, बहन हो, कांग्रेस हो, तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो, क्यों कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था। मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है।
1: Alright, we'll continue bringing you latest updates on this and more coming up after the break. Two separate pleas before the Supreme Court, both challenging the functioning of CEC Ganesh Kumar Stadium.
2: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: Now a bigger question is emerging. How did he do this? Did Israeli authorities already have his name, and did they miss the warning signs? According to reports, Israeli government officials received advance lists of crew members and passengers on foreign flights landing in Israel. According to the Transportation Ministry's website, the ministry is responsible for directing security procedures for air transport to, from, and within Israel, and for screening foreign flights arriving in the country. However, that responsibility existed largely on paper. The Transportation Ministry had no real intelligence capability, and all of it actually lay with Mossad or the Shin Bet. The Shin Bet, meanwhile, only claimed responsibility for Israeli airlines and security directives at Ben Gurion Airport, not foreign carriers. To put this into perspective, in 2023, the Knesset approved a government bill that decreed the establishment of a center to examine, in advance, the lists of arriving passengers and crew members, to identify passengers who may pose a potential security risk. This unit was established within the Israel Tax Authority, and airlines had to transfer all information about the crew and passengers to them 48 hours before the flight. Passenger and crew data, including full name and nationality, were also supposed to be sent to branches of the Shin Bet, the police, and Mossad. With such stringent mechanisms in place, the co-pilot's Omani nationality should have appeared immediately. The Israel Tax Authority received the Fly Dubai lists, but referred further questions to the Transportation Ministry. The ministry did not say whether it received or examined the crew list. For now, many questions about the hijacking attempt still remain unanswered. However, the biggest question still continues to point at failures in the Israeli vetting process. Bureau Report, NDTV World.
1: Captain Smith Machar is being hailed for his quick thinking and bravery after averting a potentially catastrophic situation and helping save lives. Now, his actions have drawn praise across the political spectrum. The BJP has questioned the Congress over Rahul Gandhi not making a public statement so far on Captain Smith Machar's bravery. BJP leaders are asking why his bravery has not received acknowledgement from the leaders of the opposition. The Congress has rejected the BJP's criticism, saying Captain Smith's bravery should be acknowledged, but accusing the BJP of turning every issue into a political event.
2: Well, I'm surprised, because Neta Pratipaksh hone ke nate ye zimmedari unki bhi banti hai. Ye wo naam, ye wo chehre hain jo dalgat rajneeti se उठकर एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, डिमांड करते हैं और करना चाहिए. एक हल्का सा प्रोत्साहन जब दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जब आपके देश के बेटे को जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं तो सीना फक्र से चौड़ा होता. मैं राहुल जी से मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना. ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए.
3: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है. अब वो कोई ऐसा थोड़ी बीजेपी ने इवेंट मना दिया है. हर चीज बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है. अरे भाई, वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, खत्म बात. ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज को आप इवेंट बना करके पेश करोगे?
4: जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो तब खुश होता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. जो भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है वो तब मौन रहता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. और राहुल गांधी मौन है क्योंकि भारत के लोकतंत्र से वो नफरत करते हैं. लोकतंत्र के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीन लाइन्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया कैप्टन स्मिथ मचर को सैल्यूट कर रहे हैं, राहुल गांधी इज द ओनली सेक्लूडेड नेता जो शांत है.
5: एक देश का बहादुर व्यक्ति स्मिथ मच्छार, उसको तो ये बधाई नहीं दे पाए. अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बधाई धन्यवाद दिया, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की. इनके मुंह में बर्फ जम गया, चाहे इनकी माँ सोनिया जी हों, बहन हों, कांग्रेस

0: सो तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो, क्यों कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था। मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है।
1: ऑलराइट, विल कंटिन्यू ब्रिंगिंग यू लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस एंड मोर कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। टू सेपरेट प्लीज, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वोट चैलेंजिंग द फंक्शनिंग ऑफ सीसी ज्ञानेश कुमार। स्टे ट्यून्ड।
2: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: There's politics brewing over the Indian captain. Captain Smith Mashar is being hailed for his quick thinking and bravery after averting a potentially catastrophic situation and helping save lives. Now, his actions have drawn praises across the political spectrum. The BJP has questioned the Congress over Rahul Gandhi not making a public statement so far on Captain Smith Mashar. BJP leaders are asking why his bravery has not received acknowledgement from the leader of the opposition. The Congress has rejected the BJP's criticism, saying Captain Smith's bravery should be acknowledged, but accusing the BJP of turning every issue into a political battle. There are political reactions coming in on this. Listen to them.
1: Well, I'm surprised because नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है. ये वो नाम, ये वो चेहरे हैं जो दलगत राजनीति से उठकर appreciation deserve करते हैं, demand करते हैं. और करना चाहिए एक हल्का सा प्रोत्साहन. जब दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जब आपके देश के बेटे को जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सीना फक्र से चौड़ा होता. मैं राहुल जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना. ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए.
2: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है. अब वो कोई ऐसा थोड़ी बीजेपी ने इवेंट मना दिया है, हर चीज़ बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है. अरे भाई वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, ख़त्म बात. ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज़ को आप इवेंट बना करके पेश करोगे.
3: जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो तब खुश होता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. जो भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है वो तब मौन रहता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. और राहुल गांधी मौन है क्योंकि भारत के लोकतंत्र से वो नफरत करते हैं. लोकतंत्र के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लाइन्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया कैप्टन स्मिथ मचार को सैल्यूट कर रहे हैं, राहुल गांधी इज द ओनली सेक्लूडेड नेता जो शांत है.
4: एक देश का बहादुर व्यक्ति स्मिथ मच्छार, उसको तो ये बधाई नहीं दे पाए. अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बधाई धन्यवाद दिया, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की. इनके मुंह में बर्फ जम गया. चाहे इनकी माँ सोनिया जी हो, बहन हो, कांग्रेस हो, तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो, क्यों कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था. मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है.
5: कैप्टन स्मिथ मचार मस्ट गेट द अशोक चक्र एंड वी अग्री विद द एबीवीपी बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड एंड फॉर हिज रेयरेस्ट एक्ट ही डिजर्व्स इट. वी अर्ज द गवर्नमेंट इज वेल टू प्लीज सजेस्ट हिज नेम बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर हिम, इट इज फॉर द एंटायर नेशन टू हाईलाइट दैट अ कॉमन सिटीजन एंड अ पायलट कैन सेव द लाइव्स ऑफ 174 इंडिविजुअल्स. दिस वॉरेंट्स करेज, this warrants the nation's highest gallantry award, which is the Ashok Chakra.
0: Coming up after the break, 2 separate pleas before the Supreme Court, both challenging the functioning of CEC Ganesh Kumar. Stay tuned, we'll be right back.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Rachel Sager. What's that to be? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
9: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: Do you know the political response to his bravery has now become a political story of its own on home ground, with the BJP attacking the Congress over what it calls the silence of Rahul Gandhi, arguing that the leader of opposition has not publicly acknowledged Captain Smith. In fact, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi, he has gone much further, accusing the Congress leadership of what he calls silent support to terrorism. The Congress has outright rejected that line of attack, saying Captain Smith's courage deserves recognition, but accused the BJP of politicizing this incident. We've lined up crucial political reactions you need to listen to.
1: Well, I'm surprised, because neta pratipaksh hone ke nate ye zimmedari unki bhi banti hai. Ye wo naam, ye wo chehre hain jo dalgat rajneeti se utkar appreciation deserve karte hain, demand karte hain aur karna chahiye. एक हल्का सा प्रोत्साहन जब दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जब आपके देश के बेटे को जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सीना फक्र से चौड़ा होता है। मैं राहुल जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए।
2: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है। अब वो कोई ऐसा थोड़ी बीजेपी ने इवेंट मना दिया है, हर चीज़ बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है। अरे भाई वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, ख़त्म बात। ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज़ को आप इवेंट बना करके पेश करोगे?
3: जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो तब खुश होता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है। जो भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है वो तब मौन रहता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है। और राहुल गांधी मौन है क्योंकि भारत के लोकतंत्र से वो नफरत करते हैं। लोकतंत्र के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीन लाइन्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया आज कैप्टन स्मिथ मचर को सैल्यूट कर रहे हैं, राहुल गांधी इज द ओनली सेक्लूडेड नेता जो शांत है।
4: एक देश का बहादुर व्यक्ति स्मिथ मच्छार, उसको तो ये बधाई नहीं दे पाए। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बधाई धन्यवाद दिया, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की, इनके मुंह में बर्फ जम गया। चाहे इनकी माँ सोनिया जी हो, बहन हो, कांग्रेस हो, तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो, क्यों कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था। मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है।
0: Alright, on that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you. Do stay tuned to the Breakfast Show on the NDTV network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन।
1: Welcome back. The big news we're tracking here on NDTV. The Supreme Court has issued notices to the Election Commission and to the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. The plea alleges that the Chief Election Commissioner took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission, especially around SIR. The Supreme Court has now issued a notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and the other two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi. The Supreme Court has also sought the ECI's response within a week on the allegations. The court said it would reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modifications in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed the new declaration in Form 6 was approved by the top court. Let's take a look at the reactions that are now coming in on this big story.
2: ऐसा हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
3: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
4: लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा, तो यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है। लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना।

0: magic, related to we seem to have the courage to go into surgical strikes with them. Why don't we have the courage to sit across the table with them? Why can't we talk to them? Why can't we make friends with them?
1: सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी तो टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, या तो हम कहते हैं कि उसके बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, या उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जो बीजेपी ने मार्केटिंग की सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं होती थी, उसकी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता। ये बीजेपी का फंडा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की, अच्छी बात है, मुल्क के अंदर कैपेसिटी है सर्जिकल स्ट्राइक करने की, लेकिन उसके बाद क्या ख़त्म हो गया माहौल? फिर भी तो चीज़ रहती है, इसलिए बातचीत होनी चाहिए।
2: आपको लगता है मनीष शंकर राय जो कहते हैं ठीक है?
1: बिल्कुल दुरुस्त कहता है, पुराना लीडर है, सीजन लीडर है, दुरुस्त कहता है, स्कॉलर है, वो अनपढ़ आदमी नहीं है।
3: Well, moving on to some other news, in a controversy over actor Sanjay Dutt's remarks on peace in India, or rather how he did not feel there was peace in India, which has sparked a political war of words. Now, on the Shekhar Suman show, Dutt said that he could no longer feel the same peace in India and spoke of the country's need for peace and togetherness, saying that he wishes to go back to that time when there was peace. The actor has now clarified that his remarks were part of a scripted, light-hearted conversation, says he never intended to hurt or disrespect anyone, considering the massive controversy that exploded after this. The political reaction has only intensified. BJP leader Parinay Phuke has hit back at Dutt, questioning his remarks and taking a dig at his liquor brands. In fact, also saying he should go to Pakistan. Congress leader Nana Patole, however, backed Dutt, saying that people feel unsafe in BJP-ruled states. On the other hand, Samajwadi Party alleged Dutt's U-turn could have been due to the government pressure. Meanwhile, Suman said the show is pro-people, unbiased and democratic, and insists that Dutt's remarks were completely innocuous. He urged that Sanjay Dutt should not be penalized or maligned for what he never said or meant.
4: इतनी प्यारी है, दे शुड बी एक पीस होना चाहिए, आई कांट फील दैट पीस यू नो इन आवर कंट्री एनी मोर। आई थिंक वी इंडियंस आर लार्ज हार्टेड पीपल,
5: यस,
4: एंड वी आर हॉस्पिटेबल, वी गिव सो मच यू नो, एंड वी शुड बी लाइक दैट ऑलवेज। बस मैं शिव जी से वही प्रार्थना करता हूँ कि वो समय जल्दी,
5: और हम भी शिव जी से वही प्रार्थना करते हैं।
6: मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त सटिया गए और उम्र के साथ साथ इस प्रकार का बेतुका वक्तव्य होता है, और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो अनेक दारू के ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किए उसका भी असर उन पे हो रहा है। और संजय दत्त जी को जब भारत में शांति नहीं मिलती होंगी तो निश्चित ही पाकिस्तान में उनको शांति मिलेंगी, या तो फिर उनको इरवड़ा जेल में शांति मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक जगह पर वो चले जाए।
7: बिल्कुल सच कहा है उनने कि राज्यों में है या देशों में हो, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लोगों को सुरक्षित नहीं है लोग, और इसलिए उन्हें बीजेपी की और केंद्र की और राज्य की सरकारों को अवगत कराया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई देश में सुरक्षित नहीं है तो देश के एक आम इंसान को भी वो बोलने का अधिकार है, क्योंकि लोगों के वोटों की सरकार होती है, लेकिन ये तो चुनाव के प्रक्रिया से सरकारें आई है, तो ये सरकार अगर लोगों के प्रक्रिया से आई होंगी तो ये सरकार ने वो संज्ञान लेना चाहिए, और तुरंत जो गुंडाइज्म देश और राज्यों में बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए।
3: All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, we'll get to the latest on the Fly Dubai incident involving the Omani pilot. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
1: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: High rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
3: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
1: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
4: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
6: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. योर फ्रेंड सेड ये ले ले. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma.
7: Welcome back. Now, controversy over actor Sanjay Dutt's remarks on peace in India. In fact, rather how he felt there was no peace in India and prayed it would return soon has sparked a political war of words. On Shekhar Suman's show, Dutt said he could no longer feel the same peace in India and spoke of the country's need for peace and togetherness. He prayed for it. Now, this created a huge controversy and the actor has now clarified that his remarks were part of a scripted, light-hearted conversation. Says he never intended to hurt or disrespect anyone. But the political reaction has only intensified. BJP leader Paranay Phuke has hit back at Dutt, questioning his remarks, taking a dig at his liquor brands, even asking him to go to Pakistan if he feels no peace. Congress leader Nana Patole, however, backed Dutt, saying people felt unsafe in BJP-ruled states. On the other hand, Samajwadi Party alleged Dutt's U-turn could have been due to government pressure being brought on him. Meanwhile, Shekhar Suman says the show is pro-people, unbiased and democratic, insisting that Dutt's remarks were completely innocuous. He urged that Sanjay Dutt not be penalized or maligned for what he never said or meant.
8: There should be a peace. I can't feel that peace, you know, in our country anymore. I think we Indians are large-hearted people.
9: Yes.
8: You know? And we are hospitable. We give so much, you know, and we should be like that, always. And बस मैं शिवजी से वही प्रार्थना करता हूँ कि वो समय जल्दी.
9: और हम भी शिवजी से वही प्रार्थना करते हैं.
10: मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त सटिया गए और उम्र के साथ साथ इस प्रकार का बेतुका वक्तव्य होता है. और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो अनेक दारू के ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किए उसका भी असर उन पे हो रहा है. और संजय दत्त जी को जब भारत में शांति नहीं मिलती होंगी तो निश्चित ही पाकिस्तान में उनको शांति मिलेंगी या तो फिर उनको इरवड़ा जेल में शांति मिलेंगी. मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक जगह पे वो चले जाए.
11: बिल्कुल सच कहा है उनने कि राज्यों में है या देशों में हो जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है. लोगों को सुरक्षित नहीं है लोग और इसलिए उनने बीजेपी की और केंद्र की और राज्य की सरकारों को अवगत कराया है. उसका संज्ञान लेना चाहिए. ये कोई देश में सुरक्षित नहीं है तो देश के एक आम इंसान को भी वो बोलने का अधिकार है क्योंकि लोगों के वोटों की सरकार होती है. लेकिन ये तो चुनाव के प्रक्रिया से सरकारें आई है तो ये सरकार अगर लोगों के प्रक्रिया से आई होंगी तो ये सरकार ने वो संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो गुंडाइज्म देश और राज्यों में बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए.
12: मुझे लगता है कि देश के जो अधिकतर नागरिक हैं आज वो इस देश में कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षित महसूस नहीं करते और उसका कारण है कि जिस प्रकार से अपराधी पहलगाम घूम रहे हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं और अपराध बेलगाम है और अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है तो कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे. लेकिन अगर संजय दत्त साहब अपने बयान से पीछे हटते तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ये दिखाता है कि कैसे सरकार दबाव बनाती है उन इंडिपेंडेंट वॉइसेस पे जो अपनी बात को, अपने दिल की बात को जनता के सामने रखते हैं और उन्हें अपने, मुझे लगता है किसी भी कारणवश उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ता है।
7: All right, so Sanjay Dutt giving a clarification after facing that backlash. Well, that's it for me for the moment. News updates continue right here on NDTV. Do keep watching.
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।

0: मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे।
1: A quarter century of transformative leadership, from defining governance in Gujarat to steering India as a pivotal global power, Prime Minister Narendra Modi completes 25 years of governance.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: felt unsafe in BJP-ruled states. On the other hand, Samajwadi Party alleges that Dutt's U-turn could have been due to government pressure being brought on him. Meanwhile, Shekhar Suman himself said the show is pro-people, unbiased and democratic, insisting that Dutt's remarks were completely innocuous. He urged that Dutt should not be penalized or maligned for what he never said or meant.
1: There should be a peace hona chahiye. I can't feel that peace, you know, in our country anymore.
2: Mm.
1: I think we Indians are large-hearted people.
2: Yes. You know,
1: and we are hospitable.
2: Mm.
1: We give so much, you know, and we should be like that, always. Now, bas main Shivji se wahi prarthna karta hu ki wo samay jaldi.
2: Aur hum bhi Shivji se wahi prarthna karte hain.
3: Mujhe aisa lagta hai ki Sanjay Dutt chatiya gaye hain. और उम्र के साथ साथ इस प्रकार का बेतुका वक्तव्य होता है और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो अनेक दारू के ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किए उसका भी असर उन पे हो रहा है और संजय दत्त जी को जब भारत में शांति नहीं मिलती होंगी तो निश्चित ही पाकिस्तान में उनको शांति मिलेंगी या तो फिर उनको इरवड़ा जेल में शांति मिलेंगी मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक जगह पर वो चले जाए
4: सच कहा है उनने कि राज्यों में है या देशों में हो जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है लोगों को सुरक्षित नहीं है लोग और इसलिए उन्हें बीजेपी की और केंद्र की और राज्य की सरकारों को अवगत कराया है उसका संज्ञान लेना चाहिए ये कोई देश में सुरक्षित नहीं है तो देश के एक आम इंसान को भी वो बोलने का अधिकार है क्योंकि लोगों के वोटों की सरकार होती है लेकिन ये तो चुनाव के प्रक्रिया से सरकारें आई है तो ये सरकार अगर लोगों के प्रक्रिया से आई होंगी तो ये सरकार ने वो संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो गुंडाइज्म देश और राज्यों में बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए
5: मुझे लगता है कि देश के जो अधिकतर नागरिक हैं आज वो इस देश में कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षित महसूस नहीं करते और उसका कारण है कि जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं और अपराध बेलगाम है और अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है तो कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे लेकिन अगर संजय दत्त साहब अपने बयान से पीछे हटते तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ये दिखाता है कि कैसे सरकार दबाव बनाती है उन इंडिपेंडेंट वॉइसेस पे जो अपनी बात को अपने दिल की बात को जनता के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मुझे लगता है किसी भी कारणवश उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ता है
0: And another political row has erupted, this time over Congress leader Manishankar Iyer's remarks on India-Pakistan ties and surgical strikes. He questioned why India has the courage to carry out surgical strikes but not the courage to sit across the table and talk to Pakistan. He's called for dialogue and with Pakistan and said India must resolve its border issues with both Pakistan and China. Now, his remarks have drawn support from the National Conference. The party says terrorism did not end after surgical strikes and argues that dialogue remains the only solution to resolve the conflict. The BJP, however, has hit out.
6: We have one very big contribution to do, and that would be to give South Asia a voice which matters. And for that South Asian voice to arise, India has to make peace with Pakistan. India has also to resolve its border issues with China. Both of these require dialogue. And for the last 12 years, almost 12 years, we've not even had high-level diplomatic relations with Pakistan. We seem to have the courage to go into surgical strikes with them. Why don't we have the courage to sit across the table with them? Why can't we talk to them? Why can't we make friends with them?
7: Surgical strike होने के बाद भी तो terrorism खत्म नहीं हुआ या तो हम कहते हैं कि उसके बाद terrorism खत्म हो गया बात खत्म हो गई या उससे पहले भी surgical strike जो बीजेपी ने marketing की surgical strike की उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं होती थी उसकी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता ये बीजेपी का फंडा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की अच्छी बात है मुल्क के अंदर कैपेसिटी है सर्जिकल स्ट्राइक करने की लेकिन उसके बाद क्या ख़त्म हो गया माहौल फिर भी तो चीज़ रहती है इसलिए बातचीत होनी चाहिए
8: आपको लगता है मणिशंकर जो कहते हैं ठीक है
7: बिल्कुल दुरुस्त कहता है पुराना लीडर है सीजन लीडर है दुरुस्त कहता है स्कॉलर है अनपढ़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट। Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: has triggered a political face-off, with the BJP now questioning Akhilesh's Ayodhya outreach and asking whether he will also visit the Ram Mandir temple. The BJP has accused the Samajwadi Party chief of turning the Ayodhya visit into political exercise ahead of the assembly polls in the state.
1: Ram Mandir bhi jayenge, koi aashcharj ki baat nahi. वोट के खातिर टोपी भी पहनेंगे, नवाज भी पढ़ेंगे, अब पढ़ते आए हैं, बाप पिताजी भी पढ़े नेताजी, अब बेटा जी भी पढ़ेंगे और रम खुदैया बनेंगे. रम खुदैया का कहानी नहीं जानते होंगे. एक आदमी, एक नाला टपना था, मियाँ जी या खुदा कह के टप गया. हिंदू था का या बजरंगबली, एगो अखिलेश यादव थे जो कहीं कि थोड़ा खुदा का भी ले लेते हैं, थोड़ा बजरंग बल, पीछे में टपक के गिर गए. तीरम खुदैया बनेंगे.
2: आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा है, कुंठा है कि उनके ना चाहने के बावजूद से ये सब इतना अयोध्या का विकास हुआ है. तो विकास सब जगह दिखता है. अखिलेश जी को भी आना चाहिए. हनुमानगढ़ी भी पास में ही है, भगवान श्री राम का मंदिर भी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो भी वही नज़दीक है. तो उन्हें निश्चित रूप से आना चाहिए.
3: बढ़िया, जय राम लल्ला के पास पैर पे जाके माफ़ी मांगे कि मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी कार सेवकों पे गोली चला के. मैंने आज तक गलती की, अभी तक नहीं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए. हमें उम्मीद है कि राम लल्ला माफ़ कर देंगे.
4: अब उन्होंने, भगवान राम ने पहले लोकसभा में हराया, फिर आदरणीय अखिलेश जी को ज्ञान दिया कि देखो हमारे यहाँ चोरी हो रहा है, उन्होंने भंडा फोड़ किया, अब पापियों को थोड़ा हटाए हैं, तो हो सकता है कि उसलिए जा रहे हों पूजा अर्चना करने, तो क्या प्रॉब्लम है.
0: In other news, shifting our focus to Punjab, where the state

0: Minister Aman Arora has hit back, accusing central agencies like the CBI and ED of working at the BJP's behest and further questioning whether the probe will deliver justice or not.
1: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj October mein jo aaj faisla high court se aaya hai to inko pure inka pura chehra nange hone mein pure 5 saal lag gaye. तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे.
2: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है. कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है. और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाईकोर्ट ने किया है. आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है. मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं.
3: हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी. इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा.
4: ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है. इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे.
5: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाईकोर्ट ने देता ते आंदे 2 महीनों च यह जिन्ने स्केल्टन इन्हों के कबड़ च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए. सीएमओ का अपना ऑफिस ये ओएसटी ये नेम किए गए हैं, वड्डे पैमाने से पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जड़े ने उन्होंने जी मदद की है. ये सीबीआई का जो अज हाईकोर्ट का फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नू. निरी मशहूरिया की सरकार है, झूठी सरकार है.
6: अनफॉर्चुनेटली मैनू लगता कि अज के हालात जो पंजाब के आ, मैं ऑफिसर्स नू भी और डीजीपी नू और सिविल ऑफिसर्स नू भी चीफ सैकटरी नू ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ. जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ तुहाडी हुण किश्ती डुबण लगी आ ते मैं तुहानू सलाह दिंदा उह किश्ती तो छाल मार जाओ, क्योंकि जो मैसर खाना एक एमएलए नाल होया वो तुहाडे नाल भी होना. ये लूटर पार्टी जिहड़ी आ दिल्ली वाले ये लुट के सारा लै गए, लेकिन उहदी सजा जिहड़ी आ तुहानू भुगतनी पैणी.
7: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में. एडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4 साढ़े 4 साल से. इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए. और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है. और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की. सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है.
8: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे. असी कहने कि असी कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान. आ तुम हूँ ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही हैं. तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा.

0: ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1: Sitting on the stories from Punjab, the state's law and order is under intense political scrutiny after three separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Singh Sandhu was shot dead in Amritsar as well. The opposition has now trained its guns on the Bhagwant Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence in the state. The Bharatiya Janata Party has now targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra cited recent killings, alleging that law and order had worsened under the Aam Aadmi Party government in Punjab. He demanded answers from the Punjab government on the situation as well. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and drugs are being delivered to homes on just phone orders.
2: ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है। हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा, तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
3: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है। कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है। और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाईकोर्ट ने किया है। आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं।
4: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार।
5: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ।
1: We're slipping into a very short break, but come right back. Coming up next, we'll tell you about those latest revelations when it comes to the Omani co-pilot and the confessions that he has made as a multi-nation probe is underway. Lots more lined up. Come right back.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain.

0: रंग बना रहे।
1: बजे पेंट्स, रंग बना रहे।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: अरे
1: बोला है
0: भाई
1: ना, ट्वीट किया है।
0: ये विषय देश की राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर चुनाव करा लेंगे अब, ये अब इसी के ऊपर बात करेंगे। मतलब आप बात नहीं करते हो रोजगार के ऊपर, बात नहीं करते हो विकास के ऊपर, बात नहीं करते हो एट्रोसिटी की। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट एट्रोसिटी की घटना है उसके ऊपर आप बात नहीं करते हो। बात करोगे आप कैप्टन मचार की? अरे जो अपने आप मार रहे हैं उनके मारने वालों को भी कर लो कुछ।
1: पर आपको लगता नहीं है कि एक जब देश का मुद्दा है, अगर जैसे सोनिया जी ने गाजा को लेकर
0: अरे
1: के
0: हो
1: पेपर में
0: आप,
1: एडिटोरियल लिखा था, तो इसके
0: मेरा
1: ऊपर भी तो
0: मेरा
1: बोल ही
0: विषय
1: सकता है
0: कैप्टन
1: ना।
0: मचार के ऊपर इतनी चर्चा करना नहीं है ना, मैं इतनी चर्चा कर सकता हूं। मैंने बोल दिया, सबसे पहले बयान दे दिया था, बात खत्म। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको जल्दी जल्दी ठीक होकर के अपने घर आए, अपने बच्चों में आए, बस।
1: आपको क्या लगता है कि उनको अशोक चक्र भी मिलना चाहिए कैप्टन मचार को?
0: अरे भारत रत्न दे दो, क्या बात आप कर रही हैं आप, भारत रत्न दे दो भाई।
1: क्योंकि बहुत सारे जो सांसद भी हैं, मिलिंद देवरा जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो काम किया है उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए।
0: अरे तो आप भारत रत्न दे दो ना, उससे बड़ा सम्मान तो कोई नहीं, आप भारत रत्न दे दो।
1: आपको लगता है कि इसको राजनीतिक वजह से भुनाया जा रहा है कि जो मांग
0: अब इनके पास बचा तो कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, यही बातें करेंगे ये। इन्हें नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, बस हर चीज में हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना।
1: कैप्टन मचार का मुद्दा आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है?
0: हर चीज में इन्हें एक ही नफरत दिखाई देती है, सिर्फ नफरत बोलते हैं ये। और ये मेरा इतना विषय नहीं है, इस पे चर्चा इतनी करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं। आप कोई चर्चा राजनीतिक बात करिए, ये कोई विषय थोड़ी ना है, इसके ऊपर हो गया, हमने तो बोल दिया, सबसे पहले बयान दिया था हमने।
1: क्योंकि इमरान साहब, अब जब आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प है मुसलमानों के लिए, वो है AIMIM, क्योंकि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अनाउंसमेंट करना चाहिए कि एक मुसलमान चेहरा उनका मुख्यमंत्री का चेहरा हो
0: देखिए,
1: सकता है?
0: कांग्रेस ने, कांग्रेस को जो करना चाहिए ना, कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस नहीं डरती है इस बात से कि कांग्रेस डर जाएगी कि मुसलमान को आगे बढ़ा दिया और हमने ये कर दिया। कांग्रेस ने तो जो करना था कर दिया, कांग्रेस को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने तो करके दिखा दिया।
1: क्योंकि यही मांग आपको याद होगा उन्होंने बिहार में भी किया था कि आपने एक
0: नहीं,
1: डेप्यूटी
0: कांग्रेस ने कर
1: सीएम,
0: दिया। देखिए अब ये
1: डेप्यूटी
0: बात
1: सीएम
0: किसी का नहीं हो
1: गठबंधन ने
0: सकता।
1: मुसलमान को क्यों नहीं अनाउंस किया, घोषित क्यों नहीं?
0: देखिए ये नहीं, आप ये बीजेपी का, ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी इसी एजेंडे को लेकर चल देगी।
1: नहीं, वो तो ओवैसी साहब ने बोला है कि आप भागीदारी दीजिए लीडरशिप में, मुसलमान आप नेता हैं, आप वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट
0: आप
1: हैं,
0: मुझे बताइए,
1: आप
0: वर्किंग
1: सीएम
0: प्रेसिडेंट
1: फेस या
0: बनाया
1: डेप्यूटी
0: सिंगल,
1: सीएम फेस हो सकते
0: आप
1: हैं?
0: बताइए सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे, सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे।
1: तो इसका
0: तो
1: क्या?
0: वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब क्या है, भागीदारी हिस्सेदारी बराबर की दे दी ना।
1: तो आगे यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा भी आप हो सकते हैं?
0: नहीं मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर सिर्फ अखिलेश जी हैं, वही चेहरा हैं। आप हमारे में लड़ाने की कोशिश मत करिए, हम नहीं लड़ पाएंगे।
1: नहीं, मैं कैसे लड़ा सकती हूँ इमरान
0: नहीं
1: साहब?
0: नहीं नहीं
1: रोज सुबह बाइट तो
0: नहीं
1: आप देते हैं, तो
0: मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी हैं, हम नहीं है और ना हमें बनना है।
1: तो
0: हमें तो
1: ओवैसी,
0: जो काम दिया है, हमें सिर्फ उतना करना है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यहां से विदाई करा दें, तभी 29 को हम लोग जीत पाएंगे।
1: आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी कि आप एक गठबंधन कर लीजिए, उस तरीके से वोट डिवाइड नहीं होंगे। अब गठबंधन नहीं हुआ, आगे आप क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि क्या
0: नहीं
1: दरवाजे
0: देखिए,
1: खुले हैं या
0: असद भाई की पॉलिटिक्स हमसे मेल नहीं कर रखाती।
1: क्यों?
0: जब हम लोग फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हैं, तो फिरका परस्ती के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू फिरका परस्ती के खिलाफ बोलेंगे, हम मुस्लिम फिरका परस्ती के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम फिरका परस्ती दोनों तरफ से, चाहे वो सांप्रदायिकता हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, हम तो सख्त उसकी मुखालफत करेंगे, चाहे वो किधर से भी हो।
1: तो आप कह रहे हैं वो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियों की वो करते हैं, हिमायत करते हैं?
0: नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारी हमारा मेल नहीं खाता उनसे, हमारी पॉलिसीज के साथ उनकी पॉलिसीज मैच नहीं करती हैं।
1: पर चाहे जितनी भी खींचतान हो सीटों को लेकर के, आप कह रहे हैं कि अभी भी सीएम फेस अखिलेश जी ही रहेंगे, यानी कि गठबंधन जारी रहेगा।
0: हाँ सीएम फेस तो हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी जो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: I know the game and the game behind it. The build-up, the action and the people behind it. Across football, cricket and beyond. For all the insights and everything around the game. Catch me, Gaurav Gala, on NDTV.
6: When it really matters.
7: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे
2: बजे पेंट्स रंग बना रहे
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा
6: सबका

जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the form 6 was approved by the top court themselves.
1: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
2: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
3: PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा, तो यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है। लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
4: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
5: That's a very serious offense, particularly as long as Gyanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Gyanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
0: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
6: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
7: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब BSP के बहनजी के साथ मिलके चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
8: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वाज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties, that when, how and how many seats.
0: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and

0: proved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Maan, calling him a Beiman Maan and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
1: 5 years lage pure election se pehle कट्टर ईमानदार और आज अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
2: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
4: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाईकोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हों के कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ का अपना ऑफिस ये ओएसटी ये नेम किए गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जेड़े ने उन्हें जी मदद की है, ये सीबीआई का जिहड़ा अज हाईकोर्ट का फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नूं। ये निरी मशहूरियां दी सरकार है, झूठी सरकार है।
5: अनफॉर्चुनेटली मैनू लगता कि अज दे हालात जो पंजाब दे आ, मैं ऑफिसर्स नू भी और डीजीपी नू और सिविल ऑफिसर्स नू भी चीफ सैकटरी नू ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ तुहाडी हुण किश्ती डुबण लगी आ ते मैं तुहानू सलाह दिंदा उह किश्ती तो छाल मार जाओ, क्योंकि जो मैसर खाना एक एमएलए नाल होया वो तुहाडे नाल भी होना। ये लूटर पार्टी जिहड़ी आ दिल्ली वाले ये लुट के सारा लै गए, लेकिन उहदी सजा जिहड़ी आ तुहानू भुगतनी पैणी।
6: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
7: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान। आज तुम हमने देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाई जा रही, तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा। ये जी चीज हुई है नाल ही ये उत्ते मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज तुहाडी स्टेटमेंट आनी चाहिए है, स्टेटमेंट नहीं ये कट्टर ईमानदार जिहड़ा हुंदा उहनूं रिजाइन कर देना चाहिए।
0: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after three separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
8: घर आ रहे थे तो घर से करीब एक किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
9: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
10: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले साढ़े चार साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दियां मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। ये हालात पंजाब दे विच बणे होए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
0: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.
11: The latest confessions of Omani co-pilot Hamam al-Hamami detailed just how long he had been planning his attack and what he ultimately intended to do. Investigators say the plan existed even before he joined Fly Dubai. He says that he researched airlines that flew to Tel Aviv and deliberately sought employment with one that would put him on the Israel route. Once he was flying for Fly Dubai, he visited Israel several times, and those visits became reconnaissance missions. During one visit to the Ben-Gurion airport in June, he focused on gathering information and preparing his attack. The first attempt was supposed to happen in July. He decided to seize an aircraft then, but abandoned the plan at the last moment because he had become friendly with one of the crew members. But the larger plan remained. His intention was to kill Captain Smith Machar inside the locked cockpit, take complete control of the aircraft, and then continue flying toward Israel as though absolutely nothing was wrong. That normality was crucial to the plan. He wanted the aircraft to receive its normal clearances, make what appeared to be a perfectly routine approach to

0: linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Maan, calling him a Beiman Maan and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
1: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
2: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
4: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टर इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरे है, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
5: ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
6: ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਏਡੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ। इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को कि ओएसडी घुम्मन के खिलाफ FIR दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
7: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान। आज हूं ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा, ये जी चीज हुई है ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead

0: நேற்று முதலமைச்சர் இங்கே ஷூட்டிங் எடுக்க வந்தார். அப்ப ஒரு சீன்ல நான் தண்ணி குடிச்சேன், அவர் டீ குடிச்சாரு. அப்ப ஒரு சீன்ல டீ குடிக்கிற ஷாட்டு, அந்த டீயை குடிச்சிட்டு 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பந்தா பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. ஆனா மக்கள் தினமும் ஒரு டீக்கு எவ்வளவு கொடுக்கறாங்கன்னு இவருக்கு தெரியுமா?
1: They are not able to understand that what mistakes they have done it, how the government has become unpopular, the way they insulted the alliance partners, the way they treated the alliance partners with vengeance, the way they mistreated the senior leadership of the alliance partners in all other parties. Why all of us left? Those parties which are all there yesterday, all of us were with the alliance with them, except TVK. All of us left. Why? Because of their behavior, their approach towards the way they were fed.
2: Let's now tell you about another big headline today that has been making the rounds. The Supreme Court had issued notices to the Election Commission and the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now, the plea alleges that the CEC took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the Form 6 was approved by the top court themselves.
3: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
4: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
5: PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा। यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है, लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
6: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
7: That's a very serious offense, particularly as long as Gyanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Gyanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
2: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats directly responding to Akhilesh Yadav.

0: Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we're tracking.
1: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
2: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब बीएसपी के बहनजी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
3: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वॉज द कंसॉलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties. When, how, and how many seats.
0: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
4: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है, तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
5: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
6: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
7: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाण। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ये सीबीआई दा जिहड़ा अज हाई कोर्ट दा फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नूं। ये निरी मशहूरियां दी सरकार है, झूठी सरकार है।
8: अनफॉर्चुनेटली मैनूं लगदा कि अज दे हालात जो पंजाब दे आ, मैं ऑफिसर्स नूं भी और डीजीपी नूं और सिविल ऑफिसर्स नूं भी चीफ सैकटरी नूं ये वॉर्न करदा, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
9: ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਏਡੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਇਸਕਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਕਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸਕੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਕੇ, ਉਸਕੇ ਓਐਸਡੀ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਈਡੀ ਨੇ 4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕਿ ਓਐਸਡੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
10: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
11: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ 3 जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है, और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा, तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
12: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर विरोधी मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा जिसको ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आप आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं, और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
9: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले 4.5 साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दियां मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जाएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये हालात पंजाब दे विच बणे होए ने, कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल ते डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
0: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this.

0: All right, and joining us now on the Buck Stops here is a member of Parliament of the Congress from Saharanpur, but now their new working president in Uttar Pradesh, Mr. Imran Masood. Thank you very much, Imran Saab, हमसे बात करने के लिए. पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको. बहुत सारी एनालिसिस हो गई है कि कैसे एक समीकरण बिठा रही है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम ब्राह्मण दलित का. पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं जानबूझ के समाजवादी पार्टी को इरिटेट करने के लिए तो आपको वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है.
1: नहीं, कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरे को इरिटेट नहीं करती और हम लोग सहयोगी हैं. हम लोग आपस में, हमारे रिश्ते कोई कड़वाहट के नहीं हैं. हम लोग सहयोगी हैं.
0: पर मैं आपको, एक शिवपाल सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है एक बार आपको सुनाना चाहती हूँ. सुनिए.
2: 50 सीटें पे उनको मान जाना चाहिए और बहुत ज्यादा है उनके लिए. 50 सीटें कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से, इस समय की हैसियत हिसाब से बहुत ज्यादा है. डिजर्व तो 10-20 को करते हैं.
0: वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत,
1: हमें किसी से अपनी हैसियत, मुझे अपनी, हमें किसी से अपनी हैसियत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. और ये इस तरह की जो भाषा बुलवा रहे हैं, फिर हमारे मुंह में भी जबान है, आप बोलना हम भी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चीजें सही तरह से उतर जाएं. हम नहीं चाहते कि आपस में नाइतफाकियां हो या आपस के अंदर कोई इंतशार पैदा हो. और हम चाहते हैं कि सुकून के साथ सारी चीजें होनी चाहिए.
0: नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10-20 ही मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो उतने ही हैं.
1: 107 सीट हमने तब लड़ी थी जब हमारी पार्टी सबसे कमजोर दौर में थी. 107 सीट तब लड़ी थी हमने. तो अगर वो फॉर्मूला आप देख रहे हैं तो फॉर्मूले के ऊपर ही बात कर लीजिए ना. हमने कब कहा कि आप ना बात करें. और मेरा तो सिर्फ इतना है कि जल्दी से जो भी करना है आप जल्दी से करिए, जिससे लोगों के अंदर समन्वय हो सके. ये जो इस तरह के बयान आएंगे, इन इस तरह के बयान से कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में समन्वय नहीं रहेगा. फिर आप अपना गठबंधन करते रहिए, उसके कोई मायने नहीं होंगे गठबंधन के.
0: क्योंकि जो शिवपाल जी हैं, उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं की है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रायबरेली लड़ने से डर रहे थे राहुल गांधी. वो सिर्फ क्योंकि अखिलेश जी का सहारा था और उनका सपोर्ट था, इसीलिए वो रायबरेली लड़े और जीते.
1: अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे लोगों के बयान हैं, क्या जवाब दें ऐसे लोगों को, क्या जवाब दें ऐसे लोगों को. हमें उनसे कोई मतलब नहीं. वो जाने, अखिलेश जी जाने. अब क्या कहूं मैं, जो मुझे अखिलेश जी बड़े नेता है, मैं क्या कहूं अखिलेश जी के लिए, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं.
0: क्योंकि सच बात तो यह है कि अभी अगर आखिरी इलेक्शन देखें, 2024 का हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है और कांग्रेस सिर्फ 6 ही सीटें जीत पाई. तो बिग ब्रदर
1: तो क्या हुआ है? एक बात तो बताइए. अब 2014 में 5 ही जीते थे ना, 2019 में भी 5 ही जीते थे. राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने बार बार कहा है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट था कि इतनी भारी सीटें जीत पाए.
0: आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 37 राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जीती है.
1: समाजवादी भी और हम भी, दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं. दोनों साथ चले थे ना तभी जीते, वरना एक बार बताइए 2022 में सरकार बन गई थी क्या? चारों तरफ शोर मच रहा था, नहीं बन पाई थी. सरकार अगर बनानी है तो ये बातें बंद करनी पड़ेंगी.
0: पर इमरान साहब, बातें तो कांग्रेस की तरफ से भी बंद करनी पड़ेंगी ना. आपका एक बयान था, आपने कहा देखिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके से बिहेव किया, अब उनकी क्या हालत हो गई है. समाजवादी पार्टी में कहीं एक ऐसे फीलिंग आने लगी है कि ये दंभ है, ये एरोगेंस है कांग्रेस पार्टी का. स्ट्राइक रेट आपकी नहीं, कम नहीं, होती है, मांगे आपकी बड़ी होती.
1: अब एक बार बताइए, कोई व्यक्ति इनकी पार्टी का कह रहा है कि वो राहुल गांधी उनकी वजह से जीते हैं, तो क्या जवाब दूं इसके ऊपर मैं, बताइए आप. मैं तो जवाब भी नहीं दिया इसीलिए कि फिर बात दूर तक जाती है, तो मैंने तो जवाब ही नहीं दिया इसीलिए. अभी
0: जो है एक एनालिसिस ये है कि ये पूरा जो खींचतान चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, ये बेसिकली मुस्लिम वोटों को लेकर के है. क्या इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कैप्टन स्मिथ मचार के ऊपर ट्वीट नहीं किया है? क्योंकि ये डायरेक्टली बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से कैप्टन स्मिथ मचार पर राहुल.
1: एक मिनट सुनिए, कैप्टन मचार के ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने दिया कि उस आदमी ने बहादुरी को सलाम है, लेकिन उसको भी इवेंट बना दिया बीजेपी ने. अब बीजेपी का काम तो केवल इवेंट बनाना है. कैप्टन मचार के लिए हमने सबसे पहले बोला और मेरा सब जगह सबसे पहले चला है.
0: कैसे इवेंट कैसे बनाया, इवेंट कैसे बनाया? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि उनको बात करके उनकी बहादुरी की उन्होंने तारीफ की है.
1: अरे तो हमने

0: भी तो तारीफ की, अब बहादुरी की तारीफ ही करते रहेंगे क्या? करती तारीफ और क्या करें उसकी तारीफ, बताओ क्या करना है, जो बता करना है आप बता दो मुझे।
1: राहुल जी ट्वीट कर दे, कैप्टन
0: इस किस चीज के लिए? हर चीज,
1: स्मिथ
0: एक
1: मचा
0: बात तो
1: दे।
0: बताइए, हमने हम जो बोलते हैं राहुल जी तो बोल रहे हैं, कांग्रेस ही तो बोल रही है।
1: क्योंकि आपको याद होगा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो वहां पर खड़गे जी का बयान आया, उन्होंने खास तौर पर कहा कि मेरा बोलना एक तरफ है, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि एलओपी राहुल जी हैं, राहुल जी का बोलना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इस
0: तो हर
1: मामले
0: चीज
1: में
0: में
1: भी
0: जरूरी
1: राहुल जी
0: थोड़ी
1: को
0: ना
1: बोलना
0: राहुल जी
1: चाहिए था।
0: बोलेंगे, ये कहां से जरूरी हो गया कि हर चीज में राहुल जी बोलेंगे, बताइए। अरे
1: बड़ी चीज है, देश का नाम ऊंचा हुआ
0: अरे
1: है।
0: तो देश का नाम ऊंचा हुआ अच्छा है ना,
1: ना राहुल जी ने, ना सोनिया जी ने, ना प्रियंका जी ने कुछ भी उन्होंने ना
0: अरे
1: बोला है ना ट्वीट
0: भाई
1: किया है।
0: ये विषय देश की राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर चुनाव करा लेंगे अब, ये अब इसी के ऊपर बात करेंगे। मतलब आप बात नहीं करते हो रोजगार के ऊपर, बात नहीं करते हो विकास के ऊपर, बात नहीं करते हो एट्रोसिटी की, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट एट्रोसिटी की घटना है उसके ऊपर आप बात नहीं करते हो, बात करोगे आप कैप्टन मचार की? अरे जो अपने आप मार रहे हैं उनके मारने वालों को भी कर लो कुछ।
1: पर आपको लगता नहीं है कि एक जब देश का मुद्दा है, अगर जैसे सोनिया जी ने गाजा को लेकर
0: अरे
1: के
0: हो
1: पेपर
0: गई,
1: में
0: आप
1: एडिटोरियल लिखा था, तो इसके
0: मेरा
1: ऊपर भी तो
0: मेरा
1: बोल ही
0: विषय
1: सकते हैं ना।
0: कैप्टन मचार के ऊपर इतनी चर्चा करना नहीं है ना, मैं इतनी चर्चा कर सकता हूं, मैंने बोल दिया, सबसे पहले बयान दे दिया था, बात खत्म। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको जल्दी जल्दी ठीक होकर के अपने घर आए, अपने बच्चों में आए, बस।
1: आपको क्या लगता है कि उनको अशोक चक्र भी मिलना चाहिए कैप्टन मचार को?
0: अरे भारत रत्न दे दो, क्या बात आप कर रही हैं आप, भारत रत्न दे दो भाई।
1: क्योंकि बहुत सारे जो सांसद भी हैं, मिलिंद देवरा जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो काम किया है उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए।
0: अरे तो आप भारत रत्न दे दो ना, उससे बड़ा सम्मान तो कोई नहीं, आप भारत रत्न दे दो।
1: आपको लगता है कि इसको राजनीतिक वजह से भुनाया जा रहा है कि जो मांग
0: अब इनके पास बचा तो कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, यही बातें करेंगे ये, इन्हें नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, बस हर चीज में हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना।
1: इस कैप्टन मचार का मुद्दा आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है?
0: हर चीज में इन्हें एक ही नफरत दिखाई देती है, सिर्फ नफरत बोलते हैं ये, और ये मेरा इतना विषय नहीं है, इस पे चर्चा इतनी करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं, आप कोई चर्चा राजनीतिक बात करिए, ये कोई विषय थोड़ी ना है, इसके ऊपर हो गया, हमने तो बोल दिया, सबसे पहले बयान दिया था हमने।
1: क्योंकि इमरान साहब, अब जब आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प है मुसलमानों के लिए, वो है AIMIM, क्योंकि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अनाउंसमेंट करना चाहिए कि एक मुसलमान चेहरा उनका मुख्यमंत्री का चेहरा हो
0: देखिए
1: सकता है?
0: कांग्रेस ने, कांग्रेस को जो करना चाहिए ना कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस नहीं डरती है इस बात से कि कांग्रेस डर जाएगी कि मुसलमान को आगे बढ़ा दिया और हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने तो जो करना था कर दिया, कांग्रेस को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने तो करके दिखा दिया।
1: क्योंकि यही मांग आपको याद होगा उन्होंने बिहार में भी किया था कि आपने एक
0: नहीं,
1: डेप्टी
0: कांग्रेस ने कर
1: सीएम,
0: दिया। देखिए अब ये
1: डेप्टी
0: बात ये
1: सीएम
0: विषय अलग हो
1: गठबंधन ने
0: सकता है,
1: मुसलमान को क्यों नहीं अनाउंस किया, घोषित क्यों नहीं
0: देखिए
1: किया?
0: ये नहीं, आप ये बीजेपी का, ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी इसी एजेंडे को लेकर चल देगी।
1: नहीं, वो तो ओवैसी साहब ने बोला है कि आप भागीदारी दीजिए लीडरशिप में, मुसलमान आप नेता हैं, आप वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट
0: आप मुझे
1: हैं,
0: बताइए
1: आप
0: वर्किंग
1: सीएम
0: प्रेसिडेंट
1: फेस या
0: बनाया
1: डेप्टी
0: सिंगल,
1: सीएम फेस हो सकते
0: आप
1: हैं।
0: बताइए सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे, सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे,
1: तो इसका क्या?
0: तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब क्या है? भागीदारी हिस्सेदारी बराबर की दे दी ना।
1: तो आगे यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा भी आप हो सकते हैं?
0: नहीं मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर सिर्फ अखिलेश जी हैं, वही चेहरा हैं, आप हमारे में लड़ने की कोशिश मत करिए, हम नहीं लड़ पाएंगे।
1: नहीं, मैं कैसे लड़ा सकती हूँ इमरान
0: नहीं
1: साहब,
0: नहीं
1: रोज सुबह
0: नहीं
1: बाइट तो
0: नहीं
1: आप देते हैं तो।
0: मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी हैं, हम नहीं है और ना हमें बनना है,
1: तो
0: हमें तो
1: ओवैसी,
0: जो काम दिया है हमें सिर्फ उतना करना है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यहां से विदाई करा दें, तभी 29 को हम लोग जीत पाएंगे।
1: आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी कि आप एक गठबंधन कर लीजिए, उस तरीके से वोट डिवाइड नहीं होंगे। अब गठबंधन नहीं हुआ, आगे आप क्या कहें?

0: Fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
1: 5 years lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
2: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
4: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ का अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
5: ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
6: ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਏਡੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ। इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को कि ओएसडी घुम्मन के खिलाफ FIR दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
7: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असि कहने कि असि कट्टड़ ईमानदार है पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टड़ बेईमान। आ तुम हूं ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जेडे गवर्नमेंट के पैसे तजियां उड़ाइया जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा, ये जी चीज हुई है ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ

0: Intense political scrutiny after three separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarn Taran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
1: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब एक किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा, तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें
2: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
3: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले साढ़े चार साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दीआं मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे होए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
0: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai Horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.
4: The latest confessions of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami detail just how long he had been planning his attack and what he ultimately intended to do. Investigators say the plan existed even before he joined Fly Dubai. He says that he researched airlines that flew to Tel Aviv and deliberately sought employment with one that would put him on the Israel route. Once he was flying for Fly Dubai, he visited Israel several times, and those visits became reconnaissance missions. During one visit to the Ben Gurion airport in June, he focused on gathering information and preparing his attack. The first attempt was supposed to happen in July. He decided to seize an aircraft then, but abandoned the plan at the last moment because he had become friendly with one of the crew members. But the larger plan remained. His intention was to kill Captain Smith Machar inside the locked cockpit, take complete control of the aircraft, and then continue flying toward Israel as though absolutely nothing was wrong. that

0: working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
1: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj october mein jo aaj faisla high court se aaya hai to inko pure inka pura chehra nange hone mein pure 5 saal lag gaye to aaj भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
2: हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
4: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाईकोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केल्टन इन्हों के कबड़ चे सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ का अपना ऑफिस ये ओएसटी ये नेम किए गए ने वे पैमाने से पैसे लैके बदलियां तो होर सिफारिशा होर कारोबारी जड़े ने उन्हें जी मदद की है, ये सीबीआई का जरा जरा अज हाईकोर्ट का फैसला है, ये डायरेक्ट वही चुनौती है आम आदमी सरकार को। ये निरी मशहूरिया की सरकार है, झूठी सरकार है।
5: अनफॉर्चुनेटली मैनू लगता कि अज के हालात जो पंजाब के आ, मैं ऑफिसर्स नू भी और डीजीपी नू और सिविल ऑफिसर्स नू भी चीफ सैकटरी नू ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ तुहाडी हुण किश्ती डुबण लगी आ ते मैं तुहानू सलाह दिंदा उह किश्ती तो छाल मार जाओ, क्योंकि जो मैसर खाना एक एमएलए नाल होया वो तुहाडे नाल भी होना। ये लूटर पार्टी जिहड़ी आ दिल्ली वाले ये लुट के सारा लै गए, लेकिन उहदी सजा जिहड़ी आ तुहानू भुगतनी पैणी।
6: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। एडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4 साढ़े 4 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
7: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान। आज तुम हूँ ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा, ये जी चीज़ हुई है नाल ही ये उत्ते। मैं मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज तुहाडी स्टेटमेंट आनी चाहिए है, स्टेटमेंट नहीं ये कट्टर ईमानदार जो हों को रिजाइन कर देना चाहिए।
0: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours on October 4th. An ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging

0: in the form 6 was approved by the top court themselves.
1: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप इतनी गंभीरता से ले सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
2: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
3: PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा, तो यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है। लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
4: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
5: That's a very serious offense, particularly as long as Jnanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Jnanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
0: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
6: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
7: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब BSP के भैनजी के साथ मिलके चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
8: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वाज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties, when, how and how many seats.
0: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
9: 5 years lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है, तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल

0: ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
1: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
2: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टे ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च यह जिन्ने स्केलटन इन्हों के कबड़ च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ का अपना ऑफिस ये ओएसटी ये नेम किए गए ने, वड्डे पैमाने से पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जेड़े ने उन्हें जी मदद की है, ये सीबीआई का जिहड़ा अज हाईकोर्ट का फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नू। ये निरी मशहूरियां दी सरकार है, झूठी सरकार है।
3: अनफॉर्चुनेटली मैनू लगता कि अज दे हालात जो पंजाब दे आ, मैं ऑफिसर्स नू भी और डीजीपी नू और सिविल ऑफिसर्स नू भी चीफ सैकटरी नू ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ तुहाडी हुण किश्ती डुबण लगी आ ते मैं तुहानू सलाह दिंदा उह किश्ती तो छाल मार जाओ, क्योंकि जो मैसर खाना एक एमएलए नाल होया वो तुहाडे नाल भी होना। ये लूटर पार्टी जिहड़ी आ दिल्ली वाले ये लुट के सारा लै गए, लेकिन उहदी सजा जिहड़ी आ तुहानू भुगतनी पैणी।
4: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है, और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतालिक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को कि ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
5: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान आ। तुम हूं ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जेड़े गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा। ये जी चीज़ हुई है नाल ही ये उत्ते मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज थोड़ी स्टेटमेंट आनी चाहिए है, स्टेटमेंट नहीं ये कट्टर ईमानदार जो हों को रिजाइन कर देना चाहिए।
6: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
7: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ 3 जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है। हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगी।